0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: इट वॉज तमिलनाडुज बिगेस्ट

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: इट वॉज तमिलनाडुज बिगेस्ट पॉलिटिकल मोमेंट। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर।
2: श्री जोसेफ विजय एनम नान சட்டமுறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள
1: But within hours of the historic ceremony, another name began dominating social media timelines. Trisha Krishnan,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ वी कनेक्ट द डॉट्स योर डेली एज योर ग्लोबल एडवांटेज इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी वीक नाइट्स ऑन NDTV प्रॉफिट।
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
4: दिस इज़न्ट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज़ अबाउट हाउ यू मूव।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ वी कनेक्ट द डॉट्स योर डेली एज योर ग्लोबल एडवांटेज इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी वीक नाइट्स ऑन NDTV प्रॉफिट।
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
3: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस। What we are sitting inside is a Joby powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
0: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
8: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
9: Fast moving, but still relaxed, informative, but still unbiased.
10: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
11: Happy meeting NDTV team here.
12: Thanks for NDTV.
13: Padmija Joshi.
14: Shreya Shide.
15: This is Shreya Ghosh.
16: Rakhandeep Chaudhary.
17: Manoj Yalowiwal.
18: Deepak Bopanav.
19: This is Vikte.
14: Tanushka Datta.
17: Sam Daniel.
12: Vika Ramaswamy.
15: Ritu Rajpurohit.
13: Shiv Arur.
5: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
6: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स ऑन NDTV प्रॉफिट।
9: Launch control, 0 to 100.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: cancel this exam, order a CBI inquiry, and ensure that we conduct the examination in time, which doesn't impact the academic future of the students.
1: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बार जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया।
2: सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दें, जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में ना उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का हाई नहीं है, सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा, इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पर कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो।
3: All right, some breaking news now coming in, and given the West Asia conflict's impact on fuel, Air India has now cut down international flights. It's decided to reduce several international flights temporarily, suspend some services as well, and this is between June and August, one of the busiest times for travel. The airline has said this step has been taken due to airspace restrictions over certain countries and the record high fuel prices for international operations. Well, let's go across to Tanushka now for more on this story. And Tanushka, take us through, which flights are we talking about? And so there's going to be a reduction in the number of flights on various sectors and routes.
4: Precisely, Gargi. So Air India has cut a further of about 100 daily flights beginning from June to August, including a number of long-haul flights. So this is going to be mainly international routes, long-haul flights. And as you were also mentioning, this is amid the sharp hike in jet fuel prices as well as the rupee's crash. Now, these cuts come on top of about 90 daily flight cuts in May itself. And the airline, which is used to having around 1,200 flights daily, is now going to suffer around losses of 22,000 crore, which is last fiscal, with the West Asia war showing no signs of ending. The most recent cuts include thrice weekly flights between Delhi and Chicago, four times weekly between Delhi and New York, Delhi and Shanghai and Mumbai and New York, Delhi and daily flights between Delhi and Chennai and Singapore and Mumbai as well. And flights from Singapore have also been terminated for now. Now, Air India has today specifically made this announcement with respect to rationalization of its services on the select international routes between June and August. These adjustments have been made in response to a combination of factors, the airline says, including continued airspace restrictions and a record high jet fuel prices for international operations. Remember that jet fuel prices contain about 40% of operational costs for any airline. Back to you.
3: All right, Tanushka, thanks so much for joining us with all those details. With that, we'll sip into a short break. More updates on the other side. Do stay with us.

0: on our screens as well, clearly suggesting that Prime Minister today traveled to from 7 Lok Kalyan Marg to Sewa Tir Prime Minister's office with just two cars in his convoy. That clearly suggests that Prime Minister is leading by example. He has reduced his convoy. In fact, Union Ministers like Amit Shah, JP Nadda, Rajnath Singh, all convoys were reduced to just 3 or 4 vehicles. So certainly it is now government clarifying on not using the word austerity as far as austerity is concerned. That I just told you, it suggests budget cuts and reduced government spending, but that is not the case here. It is Modi government who is not cutting any capital expenditure, welfare spending or subsidies, but just appealing to the people to spend less.
1: All right, Aishwarya. So don't say austerity measures, but it is a request by the Prime Minister to conserve our resources, you know, cut down on buying of gold and cut down on usage of petrol, diesel. In fact, talking about more work from home to take place. But let's just listen into what Union Minister Ashwini Vaishnav said during the cabinet briefing today.
2: Maniya Pradhan Mantri Ji ne public manch se bhi bola hai aur hum sabko bhi गाइड करते हैं हमेशा कि यथा संभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथा संभव जो भी हमारी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
1: All right, so the government saying don't call it austerity measures, but take a look at the Prime Minister leading by example when it comes to conserving resources. The Prime Minister has cut down the number of vehicles in his convoy to just 2 cars. You can see those visuals. Now, according to sources, the Prime Minister has even asked for the number of electric vehicles to be increased in his convoy or be increased in use by the government. Earlier this week, the Prime Minister reduced his convoy size during the domestic visits to Gujarat and Assam. And not just the Prime Minister, in fact, Home Minister too reduced the size of his convoy, and several NDA Chief Ministers like UP Chief Minister Yogi Adityanath, Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma, MP Chief Minister Mohan Yadav have also cut down on their convoy sizes. Listen in to some of the BJP reactions.
3: Koi yuddha hota tha, to log desh hit mein sona daan de dete the. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पुल करने का प्रयास करें।
4: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज एडॉप्ट किया, गवर्नर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर का कॉन्वॉय साइज डाउन साइज होगा, नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा, कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से, कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉयज का इश्यू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: एक्सलेंस मेजर्ड बाय दोज हु बिल्ट इट। प्रेजेंटिंग द जूरी ऑफ द एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स। सुनील भाटी मित्तल, चेयरमैन ऑफ द जूरी, फाउंडर एंड चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। नोएल नवल टाटा, चेयरमैन टाटा ट्रस्ट्स। यूके सिन्हा, फॉर्मर चेयरमैन सेबी। किरण मजुमदार शॉ, चेयरपर्सन बायोकॉन ग्रुप। सीएस सेट्टी, चेयरपर्सन एसबीआई। जयंत सिन्हा, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड सिविल एविएशन। रमेश दमानी, वैल्यू इन्वेस्टर एंड मेंबर ऑफ बीएसई। सिरिल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर सिरिल अमरचांद मंगलदास। एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स, ऑनरिंग एक्सलेंस, कमिंग सून।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer.

0: Days has been summoning various leaders. One such consultation took place yesterday. Again today, there was a 40-minute long meeting, and they are still pondering over their choices. Within the party, a not-so-subtle flexing of muscle has also started. In Wayanad, mysterious posters appeared warning Rahul and Priyanka Gandhi against making K.C. Venugopal the chief minister. In other parts of the state, the same person, K.C. Venugopal, his posters were being felicitated with a milk abhishekam. Now, all sides have started a vigorous whisper campaign in their favour. If you have the IUML and a very crucial ally of the Congress in Kerala, they have weighed in favour of V.D. Satheesan. Now you've got K.C. Venugopal as the pick of the central high command. Looking at past precedent, whenever the Congress has come into government in any state, the camp politics has predictably kicked in. Three camps had play in Kerala as well. One, of course, is for Leader of Opposition V.D. Satheesan. The second is for Senior Leader Ramesh Chennithala. And finally, there is General Secretary of the party, K.C. Venugopal himself, somebody believed to be extremely, extremely close to the high command, is always seen at the elbow of Rahul Gandhi. Now, with this tug of war continuing for 10 days, no real resolution in sight. Even now, the BJP has naturally grabbed this moment to take pot shots.
1: In fact, it never happened in the history of Kerala. UDF secured a thumping majority, more than 100 seats. Then even after days, and even after so-called hectic consultations, discussions, nothing is coming out. And absolutely ridiculous position. There are group dances taking place everywhere, protest marches. They even tore out Umman Chandi's photo. So Congress is always ill-famous for its worst kind of groupism. But this has limited, has no limit at all. Moreover, one can easily predict the future of this government before it begins.
2: देखिए मैं तो आज बायनोकुलर लेकर आया हूं कि कहीं पर तो केरला कांग्रेस का सीएम का कोई दावेदार दिख जाए पर दिखाई ही नहीं दे रहा 9 दिन हो गए हैं नतीजों को 9 दिन 9 days पर कांग्रेस पार्टी कंप्लीट कंफ्यूजन वाली स्थिति में है अब पश्चिम बंगाल में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई सीएम कौन है वो समझ में आ गया असम में भी सरकार बन गई पर कहां केरलम में जहां पर उनको फुल मेजॉरिटी मिली है कांग्रेस को वहां पर फुल कंफ्यूजन है
3: इज ए प्रॉपर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक पार्टी व्हिच हैज मोर देन 100 इयर्स हिस्ट्री बट हियर इज अ बीजेपी व्हिच हैज नॉट इवन क्रॉस्ड 50 इयर्स हिस्ट्री दे कैन अडॉप्ट एनी मींस टू स्टैम्प देयर डिक्टेटोरियल यू नो वर्ल्ड टू सेलेक्ट इट्स कैंडिडेट और फॉर्म ए गवर्नमेंट कांग्रेस इज नॉट लाइक दैट
0: And that brings us to the big question of the day. What does one make of the open claims to power being made by all of these contenders in Kerala? Is the Congress veering dangerously close to repeating its past mistakes where a delay in deciding on leadership has led to an implosion? And finally, the million-dollar question, will the claim of the foot soldiers prevail or will the will of the high command eventually gain precedence? And in fact, the news that is just coming in right now, the Congress huddle ended quite a while ago in Delhi, but this announcement is not going to happen today either. The wait for a chief minister for Kerala continues even now. Another day, another deadline, the final decision is still awaited. Janendra joins us live from the residence of Mallikarjun Kharge. Aaj kya ho gaya Janendra? Ab to 10 din ho gaye. एक दिन और की मोहलत क्यों मांगी गई है किसको मनाने की कोशिश की जा रही है
4: देखिए नाम पर मुहर लगा ली है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश है कि फैसला दिल्ली से नहीं हुआ है ऐलान दिल्ली से नहीं हो रहा है ऐलान त्रिवेंद्रम में हो रहा है और इसी वजह से अनाउंसमेंट को आज होल्ड किया गया है और ऑफिशियली कांग्रेस ने ये कहा है कि केरलम के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान कल किया जाएगा कल दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि उसी विधायक दल की बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा और विधायक दल की बैठक के बाद, जैसा हमने बीजेपी की बैठकों में देखा कि विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री का नाम सामने आया, कुछ वही तरीका कांग्रेस भी करने जा रही है।

0: Meet a senior leader, went there. There were meetings with all the MLAs, and finally, the Legislative Party unanimously in all these places had chosen a Chief Minister. I highly doubt that that will happen.
1: Maybe you will be well advised to at least stop all the sneaky mind games which are happening on the side. You know, nobody is fooled by all of these strategically planted leaks, these photos, these posters going up in Thiruvananthapuram and Wayanad. It's very, very apparent what is happening. But we wish you luck. And we wish luck to whoever is going to be the next Chief Minister. It's completely out of time. Thank you very much, all gentlemen, for having joined us. Tomorrow, a big day where the meeting of the Legislature Party of the Congress is going to take place. And that announcement, hopefully, is finally going to happen. Okay, and now let's shift our focus to another election, but one that is going to happen next year. We're talking about Uttar Pradesh, and it seems that the main opposition party has a sort of death wish. Why? Because you've got a very prominent spokesperson of the Samajwadi Party sparking a caste storm. What happened was that Rajkumar Bharti, the national spokesperson of the Samajwadi Party, has now been booked by the UP police for making derogatory remarks against the Brahmin community in a viral video in an event that was organized by the Rajiv Gandhi Foundation. Mr. Bharti is heard saying, while some prostitutes may be good, they may have some good in them, no Brahmin can ever be good. Simply can't be expected of them. After a massive political backlash, he issued an apology in which he claimed that his remarks have been distorted and that he never intended to hurt anyone's sentiments. First, listen in to actually what was said.
2: Brahman balana vaishya inna balana poe. Aur koi koi vaishya to bali Brahman balana. यार ये तो ज्यादा खराब हो गया है ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते भले होते
3: सुधाया नहीं ऐसा नहीं पोस्टर लगवा दीजिए बाकी चीज का
4: राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता होने से पहले पत्रकार हुआ करते थे पढ़ी लिखी बातें किया करते थे लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद से समाज में जाति का जहर घोलने की ये जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दी है और इसीलिए आप देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जातियों को आपस में लड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं
5: आपको प्रायश्चित भी करना होगा आपको ब्राह्मणों का एक प्रकार से पूजन करना चाहिए आपको ब्राह्मणों के सामने एक संदेश उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अब दोबारा आप ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी से भी हम कहेंगे कि आप भी इतना बड़ा विषय हो गया और आपकी एक टिप्पणी उस पर नहीं आ रही है हम अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे कि राजकुमार भाटी जैसे नेताओं पर आपको नकेल कसनी होगी आपको अंकुश लगाना होगा
1: Dr. Kaushalkant Mishra, spokesperson of the BJP, joins us. But the man of the moment, as it were, Rajkumar Bharti himself joins us. Bharti ji, kya zarurat thi ye bolne ki? Aap keh rahe hain isko out of context liya gaya hai. But jab aap ye bol bhi rahe the, let me just explain the context to our viewers, as was explained by Mr. Bharti. He said that in this event, he was just saying that there are a few such sayings in popular discourse where, you know, such caste-specific slurs are spoken and I do not attest to that. But aap to khud khilkhila kar hans rahe the. Aap uski ninda nahi kar rahe the. Aap to khud khilkhila ke hans hi rahe the jab aap Brahman aur Vaishya ki baat kar rahe the. Bhati ji.
6: Nahi, aisa nahi hai. Agar pura video aap dekhenge to maine iski ninda hi ki thi. Maine iska virodh kiya tha. Aur main jo koi vyakti, koi bhi XYZ, कोई किसी जाति या धर्म के खिलाफ बोलता हो या किसी जाति धर्म संप्रदाय को अपमानित करता हो मैं उसे अच्छा इंसान नहीं मानता मैं उसे अच्छी बात नहीं मानता और मैं अपना अपने दिल की बात ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं कभी किसी जाति या धर्म या समुदाय के खिलाफ बोल ही नहीं सकता ये विषय ये था कि जवाहर भवन में एक पुस्तक का विमोचन था पुस्तक का नाम था जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु भारतीय समाज में लोकोक्तियां जातियों को लेकर लोकोक्तियां मुहावरे और कहावतें टॉपिक ही ये था तो वहां ये बताया जा रहा था अलग अलग वक्ता ये बोल रहे थे कि क्या क्या कहावतें किस किस तरह के मुहावरे किस किस तरह की लोकोक्तियां समाज में प्रचलित हैं मैंने एक इससे पहले जो कहावत बताई थी वो खुद हमारे समाज के खिलाफ है मैंने बोला था कि हमें लोग ये सुनाते थे कि गुजर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये छह ना होते तो खुले किवाड़ सोते हंसा मैं इस पे भी था अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे मैं इसलिए हंसा रहा था मैं कहने वालों की मूर्खता पे हंस रहा था और फिर मैंने ये बोला कि ब्राह्मणों के खिलाफ भी ऐसा नहीं है एक तरफ से ही है दूसरी तरफ से भी ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह के बनाए जाते हैं
1: बताइए कौशल कांत
6: बोला
1: आप इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर के तोड़ मरोड़ के इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने बोला, उन्होंने गुजर अहीर कंजर पे ऊपर भी बोला, आई अपोलोजाइज इफ यू नो दिस इज नॉट मेंट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड्स कोटेड बाय राजकुमार भाटी. उन्होंने ये भी लोकोक्ति बोली थी कि गुजर अहीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छह ना होते तो खुली दीवार में सोते. किसी गुजर अहीर ने तो इस पर कोई ऑफेंस नहीं लिया, आप जबरदस्ती इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? कौशल कांत मिश्र.
7: पद्मजा, एक आदम गोंडवी साहब होते थे, उन्होंने एक छोटे सा शेर लिखा था कि काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं उजले लिबास में, और उतरा समाजवाद है राजकुमार भाटी की बात में, यही असली समाजवाद है. ये तो बस मुखौटा है. मैं अखिलेश यादव की ये क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अखिलेश यादव के ज़माने में अखबार में क्या छपता था कि ब्राह्मणों का हमेशा विरोध करती रही है समाजवादी पार्टी. न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, मैं नहीं लेके आया हूँ, पहले ही प्रिंट किया गया है, इसको आप लोग सब लोग देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का असली करेक्टर क्या है. एक ही नहीं है, दूसरी क्लिपिंग है इटावा में, मुलायम सिंह जी जहाँ पर खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार को निकाल करके उसकी औरतों को और बच्चों को मुँह पे कालिक पोत करके उनको घुमाया फिराया गया था, ये असली करेक्टर. अभी कुछ दिन पहले इनके पीडीए में पी को पंडित बना दिया था और उसके बाद ये हो रहा है, और बात यहीं तक खत्म नहीं होती है. ये सिर्फ और ये पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है पद्मजा. आपके मेरे पास इनका आमंत्रण है, इस आमंत्रण को ध्यान से देखिएगा, इस आमंत्रण को मैं पढ़ता हूँ. ये आमंत्रण सौजन्य कौन था, यानी कि स्पॉन्सर कौन था? राजीव गांधी फाउंडेशन इसका स्पॉन्सर था. किताब का नाम क्या है? जाति एवं सांप्रदायिकता के विषाणु, और लिखने वाले लेखक कौन है? डॉक्टर शकील अंसारी जावेद अख्तर, और मुस्लिम महाज का आयोजन था. और इसके जो वक्ता कौन कौन थे, नाम लेना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है. पहले वक्ता योगेंद्र यादव, दूसरे वक्ता अभय कुमार दुबे, तीसरे वक्ता आशुतोष, चौथे वक्ता डॉक्टर हिलाल अहमद, पांचवें वक्ता प्रोफेसर रतनलाल, छठे वक्ता राजकुमार भाटी जी, सातवीं वक्ता शीबा असलम फाहिमी. ये सब नेटवर्क है, नेक्सस है. क्यों? क्योंकि पहले जातियों में हिंदुओं को तोड़ो, क्योंकि हिंदुओं को कभी हरा नहीं सकते, हिंदू कभी नहीं हरा.
1: नहीं, पर उन्होंने तो जातियों में, उन्होंने तो माता प्रसाद पांडे जी को इतना सम्मान दिया है, तो फिर वो कैसे ब्राह्मण के खिलाफ हो सकते हैं? वो तो उल्टा कह रहे हैं कि देखिए इनको हमने इतना बड़ा पद दिया है माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश के अंदर.
7: अरे पद्मजा जी, माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में उनके पिता श्री जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि जो बाप का नहीं हो सकता, जो चचा का नहीं हो सकता, वो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा. ये मैंने थोड़े ना कहा था, ये तो उनके पिताजी ने ही कहा था. और जब भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जब भी किसी के साथ मिलती है, उसका करेक्टर ही चेंज हो जाता है. एक बार मिली थी समाजवादी पार्टी मायावती के साथ, तो नारा क्या हो गया था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम. जो राम का ना हुआ, जो देश का ना हुआ, जो बाप का ना हुआ, वो किसी समाज का.
1: ये सिर्फ एक बहाना था, बेसिकली इरादा वही है, इरादा वही है कि किसी एक जाति विशेष को निशाने पर लाना, टारगेटिंग अ स्पेसिफिक कम्युनिटी. और आप तो रिपीट ऑफेंडर रहे हैं. अगर इसको हम मान भी ले कि ये इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, आप तो रिपीट ऑफेंडर रहे हैं. आपने तो पहले भी कितने स्टेटमेंट्स दिए हैं.
6: नहीं नहीं, नो नो नो नो, आप गलत आरोप लगा रही है मेरे ऊपर.
1: नहीं, कैसे?
6: ये गलत.

0: में होता है पंचांग और दूसरे के हाथ में होता है झाड़ू। लेट्स प्ले दैट आउट, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आप रिपीट ऑफेंडर नहीं हैं, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए कि पहले आपने एक जाति विशेष के बारे में क्या टिप्पणी की है।
1: नहीं, मुझे याद है जो मैंने
2: बोला। ज्यादातर आपने दो लोगों को निकलते हुए देखा होगा, एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी, एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है, सब बहकाने वाला सौदा है, और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है।
0: बताइए भाटी जी, पंचांग और तिलक लगा करके वो लोगों को बहलाता है और दक्षिणा लेता है।
1: कौन सा अपराध इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? पहली बात तो क्या ये किसी जाति के खिलाफ बोला मैंने या किसी?
0: सारे लोग जो हाथ में पंचांग और
1: तो भारत की जाति व्यवस्था पे बोल रहा हूँ, और मैं
0: वो लोगों को लूटते हैं, भटकाते हैं और उनसे दक्षिणा लेते हैं।
3: कौन चलता है भाटी?
1: मैं बोल रहा हूँ नहीं, अब जब जैसे आपने कौशलकांत मिश्रा जी को शांति से अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे भी आप बात कहने का अवसर दें। आपने सवाल पूछ लिया, आपने क्लिप सुना दी। मैं जो मैंने इसमें बोला, मैं एक भी शब्द का खंडन नहीं कर रहा। ये भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास सदियों से हो रहा है, महात्मा बुद्ध के ज़माने से हो रहा है, कबीर, नानक, दादू, रैदास, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, अनेक महापुरुष इस देश में हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और अनेक हुए जो इस जाति व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते रहे, जहां एक मेहनतकश जाति को अपमानित किया जाता है और एक जाति को ऊपर बताया जाता है, एक को नीचे बताया जाता है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं।
0: नहीं नहीं भाटी जी, यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे आपने बहुत सिंपली ये बात,
1: सब बराबर है।
0: जो आदमी माथे पे तिलक और हाथ में पंचांग लेकर के निकलता है वो धूर्त होता है, और ये बार बार जो एक तरीके से पिक्चराइजेशन किया जाता है, आप बिल्कुल उसी स्टीरियोटाइप को अपहोल्ड कर रहे थे जो है ना घूसखोर पंडित, धूर्त पंडित, वही आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे और वही आपकी बातों में झलक रहा था। यहाँ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि तोड़ा मरोड़ा, आप उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। क्या हाथ में पंचांग लेने का मतलब यह हो जाता है कि आप धूर्त हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं?
1: पदम जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपके मन में कोई पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, इसलिए आप
0: इसे तो आपका भी झलक रहा है ना। अगर माथे
1: ने कहा कि सम्मान उसको मिलना चाहिए,
0: आपको लगता है कि वो लोगों को लूटने के लिए निकला है।
1: अब आपने तय कर लिया आप बोलने नहीं देंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ। आपने तय कर लिया कि मैं बोलने नहीं दूंगी, क्योंकि आप शो की एंकर हैं, आप चाहती हैं कि जो आपकी मनमर्जी की बात है वो मैं बोलूं, तो बोलने देंगे नहीं तो नहीं बोलने देंगे।
0: मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जी जो आपने बोला कि एक आदमी हाथ में पंचांग दबा करके निकलता है, क्या उसका क्राइम बस ये है कि वो पंचांग पकड़ा हुआ है और तिलक लगाया हुआ है, मतलब कि वो चोर है? सारे लोग जो तिलक लगाते हैं वो चोर होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं,
1: फायदा क्या? इस तरह डिबेट होती है? आप मुझे भाषण देने के लिए आपने बुलाया या मेरे पक्ष सुनने के लिए बुलाया,
0: बताइए?
1: आपको भाषण देना है मुझे आपकी बात बैठ के सुननी है क्या, या अपनी बात कहनी है? मुझे अपनी बात कहने का मौका देंगी आप या नहीं देंगी? मैंने केवल ये कहा है इस वीडियो में, मैंने किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोला है। मैंने ये कहा कि जो आदमी मेहनत करता है, जो उस मोहल्ले की सफाई करता है, सम्मान उसे भी मिलना चाहिए। उसे हम अपमानित करते हैं, उसे सम्मान नहीं देते, उसे बराबर में नहीं बैठने देते। मैंने क्या गलत कहा है बताइए आप? ये हमारा संविधान भी कहता है,
0: क्योंकि आपका जो भाषण,
1: अगर आप चाहते हैं कि
0: इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी,
1: हजारों साल
0: आपने सिर्फ दो तस्वीरें पेश की, आपने कहा एक आदमी
1: नहीं, आप पूरा सुनिए, उसमें
0: आदमी झाड़ू पकड़ता है बस,
1: नो
0: एक आदमी की गलती सिर्फ ये है कि वो तिलक लगाया हुआ है और दूसरे आदमी क्योंकि वो झाड़ू पकड़ा है वो सही है, एक आदमी गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने पंचांग बगल में दबाया है और माथे पे तिलक लगाया है, और ये आपने एक अकेली बात नहीं कही है सर, आपने एक और बात कही है और मैं आपको वो भी कोट करना चाहती हूँ, और मैं वर्बैटिम कोट कर रही हूँ। आपने कहा कि हमारा हक किसने खाया? अगर हमारा हक पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी ने नहीं खाया होता तो हमें आरक्षण की जरूरत नहीं होती, और आज भी ये लोग उसी पैनल पे बैठे हुए हैं। कौन? यही पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी। क्या गलती है कि उनका नाम ये है? ये तो आपका पूर्वाग्रह दिखाता ना, इट शोज हाउ यू आर

0: Ist.
1: नहीं, आप बायस्ड हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप एक पक्ष में खड़ी हुई हैं। आप तय करके आई हैं कि आपको मुझे डांट पिलानी है, मुझे भाषण देना है। आप मेरा पक्ष सुन नहीं रही हैं और मैं ऐसी डिबेट को डिबेट नहीं मानता। ये
0: नहीं,
1: डिबेट नहीं है,
0: ये
1: आप एक आदमी को बुला
0: ये ऑफेंसिव पर जाकर के
1: कर रही हैं।
0: तो कोई एक्सप्लेनेशन
1: नहीं, आपका रोल नहीं है जो आप रोल कर रही हैं।
0: आपने कहा
1: ये आपका रोल नहीं है जो आप रोल कर रही हैं।
0: एक तरफ किसी को दबाया जा रहा है, आप उसके खिलाफ बोल रहे थे
1: और
0: भाषण नहीं दे रही
1: हैं आप।
0: मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आपने आइडेंटिफाई करके अगर किसी को गलत पोर्ट्रे किया है उसको फिर आप जाति सूचक कैसे नहीं बोलेंगे भाटी जी?
1: आप गलत आरोप लगा रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं लगातार, आप प्रोपेगंडा कर रही हैं, आप बायस्ड हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, आप पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं। अपने शो में एक गेस्ट को बुला के आप लगातार उसे भाषण पिला रही हैं, उसका पक्ष बोलने नहीं दे रही हैं, आप उसका पक्ष सुनने नहीं दे रही हैं श्रोताओं को। ये डिबेट नहीं होती है, घोर निंदा करता हूं इसकी।
0: राजकुमार भाटी जी, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चंस और आपकी बातों को हमने बिल्कुल वर्बैटिम पेश किया है। आई थिंक आपका पक्ष और आपकी बातें लोगों ने सुनी है। आई लीव इट टू देयर विजडम अगर उनको लगता है बायस किसकी तरफ है, हु वाज बायस्ड, हु ऑलरेडी वांटेड टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ अ कम्युनिटी। आई विल लीव इट टू देयर विजडम। और ये आपको भी पता है कि आप तो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं, आप भी इसकी क्लिप डालेंगे, आप इसको बायस कहेंगे, लोग वहां पर भी आकर के खुद से जज कर लेंगे कि कौन सही है और कौन बायस्ड है। फॉर द टाइम बीइंग, राजकुमार भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स ऑल्सो टू कौशल कांत मिश्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
9: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
10: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: Starting off with the big breaking news coming in from down south. In Karnataka, the government has allowed hijab, rudraksh, janeyu, the sacred thread, and other limited religious symbols in schools. This is a Congress government in Karnataka which has taken this decision by officially withdrawing its Feb 5, 2022 uniform order and has issued fresh guidelines allowing students to wear limited traditional and faith-based symbols along with prescribed uniforms in schools and college across the state. Under this new order issued on May 13th, all government-aided and private educational institutions will continue enforcing prescribed uniforms. However, students will now be permitted to wear limited traditional and customary symbols such as turban, janeyu, which is the sacred thread, hijab, and other religious symbols will also be allowed. But BJP has come out all guns blazing against the Congress government, claiming that this is another attempt by the Congress Sarkara in Karnataka, which is trying to divert the attention of the people from the fact that they were against the Hindu religious symbols in schools and has demanded that the Karnataka government should also allow saffron shawls in schools. Sample the reactions coming in, then we'll go to my colleague Deepak.
1: Disregarding the Supreme Court, state government permitting hijab inside the classroom is contempt of court. Moreover, and the order also states, saffron shawls are not permitted inside the classroom. This is clear bias towards the Hindus. This government is for minorities and all their policies are only vote bank driven. BJP strongly deplore this decision of the state government.
2: Our government has given this order that the hijab ban has been removed and there is no pabandi on hijab. So our government, Karnataka, our Congress government, and Siddaramaiah saab, D.K. Shivakumar saab, और मधु बंगारप्पा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. उन्होंने ये काम किया है और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है. हमने जो वादा किया था, सिद्धरमैया साहब ने भी वादा किया था, तो आज उसको ख़त्म कर दिया गया है. बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए.
0: And my colleague Deepak Bopanna is joining me over the phone line with more details. Deepak, we are seeing that the politics over the matter refuses to die down. Now the BJP is demanding permit saffron shawls.
3: Well, this is going to definitely, be an interesting development considering the fact that, right now the entire hijab row in Karnataka had blown up quite a bit a few years ago. The matter, of course, also had reached the Supreme Court of India. And, there was a status quo that was ordered, which meant that, schools and uniforms that is prescribed in schools will not include any additional items, especially religious in nature. Now, this is an amended order, or rather a fresh order that has been issued, which allows for, wearing of hijab. It also allows for wearing of a turban, peta, janivara, rudraksh, and other limited traditional or religious items. Now, what is also very crucial to note here is the fact that last year there were several instances of even students who were wearing the janivara, prevented from entering the hall. They were asked to remove it. That became a controversy as well. And we've, of course, known how big a controversy the entire hijab row was. Now, many pro-Hindu organizations and then the BJP combined are saying if the hijab is allowed, which is not considered as an essential religious item, right, as per Islam, is what the BJP says. They say that even saffron shawls should be allowed. So we really have to see whether this will lead to a fresh standoff in the state of Punjab.
0: Absolutely. Thanks, Deepak, for those details. Now, after the uproar over the appointment of astrologer Radhan Pandit as a special officer on duty to the chief minister, Vijay's government has finally revoked his appointment. In fact, NDTV was the first channel to break this, and this issue took center stage in Tamil Nadu politics. In big U-turn now, Chief Minister Vijay has revoked the appointment of astrologer within 24 hours. This is the first U-turn that has been taken by this new government in Tamil Nadu. This came after huge backlash from allies as well as opposition. In fact, others in the opposition ranks were also claiming that an and an officer on special duty to the chief minister requires more than just being an astrologer. Hence, a credible and a capable person should get a chance instead of just a person having close connection with the sitting chief minister. Sample reactions.
4: நம்பிக்கைக்கு இடம் தராமல் அறிவியலை வளர்க்கும் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கின்றேன். அறிவியலார்ந்த மனிதநேயம், ஆய்ந்து தெளிந்த சீர்திருத்தம்.
5: நாங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம் என்பதை நாட்டு மக்கள் பார்க்கிறார்கள். எனவே எந்த தனிப்பட்ட விருப்பம் எங்களுக்கு இல்லை, விருப்பங்களும் எங்களுக்கு இல்லை. டாஸ்மார்க் அந்த இடங்களை, கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட இடங்களை அவர்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள் கோயில்கள் இருக்கிற இடங்களில் அதை இணைக்க வேண்டும் என்பது நல்லதுதான். அதே நேரத்தில் அந்த ஊழியர்களின் வாழ்க்கை இருக்கிறது, அது பற்றியும் சிந்தியுங்கள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம். இப்போ அரசு வந்து ஜோதிடர் ஒருவரை நியமிக்கிற போது எந்த மதத்தின் மீது நமக்கு வெறுப்பு அல்ல.
6: ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் பார்லிமெண்ட் அசம்பிளி ஹேஸ் நோ ரோல் டு பிளே, ஒன்லி தி டைமிங் வில் பி கிவன் பை தி அஸ்ட்ராலஜர். தட் இஸ் வை ஐ திங்க் ஹி ஹட் அப்பாயிண்டட் ஹிம். வாட் இஸ் ஹீ இஸ் நாட் அன் அஃபிஷியல். He needs somebody who can advise him properly as per rules and as per the government powers. What can an astrologer do? He can predict, that's all. And that prediction too is subject to happenings. I don't know why this man, I think he has more faith in him than his party.
0: Has passed its first challenge, which was the flow test, with 144 MLAs backing Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay. He has won the trust vote, but the political repercussions were heavily witnessed after this flow test was over. The AIADMK is facing a rebel. Now, 22 MLAs from AIADMK bagged Vijay in the flow test, and now the AIADMK has threatened to move against them. Many, in fact, including Shanmugam and Velumani, are about to lose their party post after AIADMK has decided to move against these rebel MLAs and decided to remove them from their party positions currently. Moreover, the Congress VCK left IUML also extended support to TVK, while one ex-MMK MLA also bagged Vijay. This brought Vijay to a comfortable majority, but the trouble remains on the rebel AIADMK MLAs that will now be facing the heat after EPS has decided to clamp down their party positions. Sample the reactions that are coming in.
7: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதலில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் மக்களுக்கான இந்த ஆட்சியை, மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்து வெற்றி பெற செய்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நமது அரசின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களும் நம்மீது நம்பிக்கை வைத்து தீர்மானமாக வாக்களித்தனர். வாகை சூடும் அந்த வரலாறு திரும்பியது, விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் 34.92% 1,72,26,208 வாக்குகளை மக்கள் தந்தனர். தமிழக வெற்றி கழகத்தை தனி பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். குதிரை பேரத்தில் எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்று கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
8: இருக்கின்ற கட்சியாகத்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும். எங்களுக்கு எதிரி கட்சி இல்ல, எதிர்கட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்போம். எங்களுடைய தலைவர்கள் அந்த பாதையைத்தான் எங்கள் வலியுறுத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவித்து, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எதிர்த்துத்தான் வாக்களிப்பார்களா என்பதை தெரிவித்து அமர்கின்றேன்.
9: தீர்ப்பளித்து இன்றைக்கு முதலமைச்சருக்கு வாக்களித்துள்ளார்கள். அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம் அதிமுக சார்பாக. அதே போல நாங்கள் யாரும் பதவிக்கு ஆசைப்படுவது கிடையாது, பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு அவர் கிடையாது.
10: தலைவருக்கு தெரியாம திருட்டுத்தனமாக இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவு தர வச்சிருந்தீங்க. இப்ப நான் சொல்றது ரொம்ப டீசென்டான வெர்ஷன். உங்க ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஆட்சியா இல்லாம ரியல் ஆட்சியா நடத்துங்க, அது மட்டும்தான்.
0: Now, days after PM Modi's call for saving fuel, Prime Minister Narendra Modi was seen leading by example. He has cut down the number of vehicles in his own convoy to just 2 cars. And the visuals on your screen show the earlier convoy of the Prime Minister, which was at least 12 cars in the convoy. And now, with just 2 cars, seen as per sources, the Prime Minister has even asked for the number of electric vehicles to be increased in the convoy. Remember that earlier this week, Prime Minister asked the nation to reduce the fuel usage, and hence he is now following and leading by example and asking others to follow. Now, not just the Prime Minister, but even the NDA CMs have decided to cut down their convoys. The convoy size has been reduced significantly by the ministers as well. And this is not just the first, but the second time that the Prime Minister has appealed about saving fuel, as there is a fuel shortage due to the ongoing war in the Iran versus US tension. Take a look at the reactions of the BJP letters.
11: कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पुल करने का प्रयास करें.
12: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए. और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए.
13: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज एडॉप्ट किया. गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा. नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा. स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा. कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से. कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉयज का इश्यू है. Except medical treatment, nobody will go to abroad. So, Assam in a humble way, Pradhan Mantri ji ka appeal ko kriyanit karne ka prayas karega.
14: Ami welcome korechi ebong ami unar tweet dekhar pore, mane khobor ta dekhar pore, amio amar security daitte thaka lokjon ke bolechi, oproyojonio gadi rakhar proyojon nei. আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক। স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
15: দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ রিডিউস দি নাম্বার অফ ভেহিকলস ইন হিজ ক্যাভালকেড। দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস অ্যান্ড মিনিস্টার্স আর অলসো টেকিং দ্য রিকোয়ার্ড অস্টেরিটি মেজার্স। The question is that Rahul Gandhi and the Congress party, why are they silent and why have they not followed action in places where there is Congress government? This further proves the point that the Congress party believes in politics, not national interest. This is why whether it is Himachal Pradesh where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi in the mind of the people of the country is considered not as a pro-India politician but as an opportunist anti-India politician.
0: The CBI probe intensifies in the NEET paper leak. At least five accused have been arrested so far from different states. Students' anger continues to grow over the cancelled exam and many are demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. NDTV has accessed the timeline of events. As per sources, the paper began circulating 45 hours before the exam and reached Sikar in Rajasthan, Jaipur and other coaching centres. The leak came to light as a student hailing from Sikar sent his father, a hostel owner, the question paper. As per sources, the paper was sold for around 10 to 15 lakh rupees and the CBI is looking closely into the Telegram groups. At least 120 closed Telegram groups were allegedly made to circulate this NEET UG paper. Now, sources suggest that the leak network had access to questions from multiple subjects, built a question bank from leaked paper. Now, as per the National Testing Agency, the new schedule will be announced in 7 to 10 days and the new exam will be held without any fees. Sample the reactions.
16: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बार जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया।
17: सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे, जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में ना उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का हाई नहीं है, सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा, इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पर कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो।
0: Breaking news coming in at this hour. Delhi police have now arrested social media influencer Dr. Neelam Singh, alias the skin doctor, for allegedly posting tweets against the Kapoor family following the death of businessman Sanjay Kapoor. The complaint, as per sources, was lodged at Vasant Kunj police station by the Kapoor family. And remember, Sanjay Kapoor was the chairman of auto components company Sona Comstar and former husband of actor Karizma Kapoor. He died in London on June 12 while playing polo, and after which the skin doctor was posting some alleged tweets which were against the interest of the Kapoor family. My colleague Akhil is also joining with more details. Akhil, do tell us about the charges against the skin doctor. What exactly was posted by this?
18: Well, if you see what we have seen, that today in a fresh development, Delhi Police South West District team has arrested a person who has been identified as Dr. Neelam Singh, alias the skin doctor, has been arrested in connection with the case. And what we have seen that earlier she has posted on social media platform X regarding the death of business tycoon Sanjay Kapoor. Because if you see what we have seen that last year in 2025 on June 12th, Sanjay Kapoor mysteriously died. And after that, what we have seen that there were several conjectures that were peddled that he died of this reasons or that reasons. And then what we have seen that later on, when the post-mortem report has come out, in which what we have seen that what we have got to know from the post-mortem report that he died due to the medical complication and heart related complication. And after that, what we have also seen that Sanjay Kapoor's mother has raised question regarding his death, and she has said that if you see she was pressurized at that point in time when she was emotionally down. She was pressurized to sign some documents as well. And in that regard, what we have seen that Dr. Neelam Singh has made several comments, and after that she has posted something on social media platform X as well. And after that, Sanjay Kapoor's family, the business tycoon's family, has lodged a police complaint at Vasant Kunj. And after that, Delhi police has taken action in that regard, and they have finally arrested Dr. Neelam Singh now.
0: Right. Thank you so much, Akhil, for those information. Thank you for tracking it. For now, we are slipping into a very short break, but right after this break, we'll tell you what's happening at the Cannes Film Festival.

0: அரசு ஈடுபடுகிறது என்று கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
1: இருக்கின்ற கட்சியாகத்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும். எங்களுக்கு எதிரி கட்சி இல்ல, எதிர்கட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்போம். எங்களுடைய தலைவர்கள் அந்த பாதையைத்தான் எங்கள் வலியுறுத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவு வைத்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எதிர்த்துத்தான் வாக்களிப்பார்கள் என்பதை தெரிவித்து அமர்கின்றேன்.
2: தீர்ப்பளித்து இன்றைக்கு முதலமைச்சருக்கு வாக்களித்துள்ளார்கள், அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம் அதிமுக சார்பாக. அதே போல நாங்கள் யாரும் பதவிக்கு ஆசைப்படுவது கிடையாது, பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு அவர் கிடையாது.
3: தலைவருக்கு தெரியாம திருட்டுத்தனமாக இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவு தர வச்சிருந்தீங்க. இப்ப நான் சொல்றது ரொம்ப டீசென்டான வெர்ஷன். உங்க ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஆட்சியா இல்லாம ரியல் ஆட்சியா நடத்துங்க, அது மட்டும்தான்.
4: Now, days after PM Modi's call for saving fuel, Prime Minister Narendra Modi was seen leading by example. He has cut down the number of vehicles in his own convoy to just 2 cars. And the visuals on your screen show the earlier convoy of the Prime Minister, which was at least 12 cars in the convoy. And now, with just 2 cars, seen as per sources, the Prime Minister has even asked for the number of electric vehicles to be increased in the convoy. Remember that earlier this week, Prime Minister asked the nation to reduce the fuel usage, and hence he is now following and leading by example and asking others to follow. Now, not just the Prime Minister, but even the NDA CMs have decided to cut down their convoys. The convoy size has been reduced significantly by the ministers as well. And this is not just the first, but the second time that the Prime Minister has appealed about saving fuel, as there is a fuel shortage due to the ongoing war in the Iran versus US tension. Take a look at the reactions of the BJP letters.
5: कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पुल करने का प्रयास करें.
6: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए. और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए.
7: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया. गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा. नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैप

0: বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক। স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
1: The Prime Minister has reduced the number of vehicles in his cavalcade. The central government officials and ministers are also taking the required austerity measures. The question is that Rahul Gandhi and the Congress party, why are they silent and why have they not followed action in places where there is Congress government? This further proves the point that the Congress party believes in politics, not national interest. This is why, whether it is Himachal Pradesh, where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi, in the mind of the people of the country, is considered not as a pro-India politician, but as an opportunist anti-India politician.
2: The CBI probe intensifies in the NEET paper leak. At least five accused have been arrested so far from different states. Students' anger continues to grow over the cancelled exam and many are demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. NDTV has accessed the timeline of events. As per sources, the paper began circulating 45 hours before the exam and reached Sikar in Rajasthan, Jaipur and other coaching centres. The leak came to light as a student hailing from Sikar sent his father, a hostel owner, the question paper. As per sources, the paper was sold for around 10 to 15 lakh rupees and the CBI is looking closely into the Telegram groups. At least 120 closed Telegram groups were allegedly made to circulate this NEET UG paper. Now, sources suggest that the leak network had access to questions from multiple subjects, built a question bank from leaked paper. Now, as per the National Testing Agency, the new schedule will be announced in 7 to 10 days and the new exam will be held without any fees. Sample the reactions.
3: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बार जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया।
4: सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे, जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में ना उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का हाई नहीं है, सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा। इनके बस का बात नहीं है, हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पर कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो।
2: Breaking news coming in at this hour. Delhi police have now arrested social media influencer Dr. Neelam Singh, alias the Skin Doctor, for allegedly posting tweets against the Kapoor family following the death of businessman Sanjay Kapoor. The complaint, as per sources, was lodged at Vasant Kunj police station by the Kapoor family. And remember, Sanjay Kapoor was the chairman of auto components company Sona Comstar and former husband of actor Karisma Kapoor. He died in London on June 12 while playing polo, and after which the Skin Doctor was posting some alleged tweets which were against the interest of the Kapoor family. My colleague Akhil is also joining with more details. Akhil, do tell us about the charges against the Skin Doctor. What exactly was posted by this?
5: Well, if you see what we have seen, that today in a fresh development, Delhi Police South West District team has arrested a person who has been identified as Dr. Neelam Singh, alias the skin doctor.

0: taken unlike the parchi system of the BJP.
1: Right.
0: As simple as that.
1: Except that the parchi here is with one family. But a quick reminder.
0: Why would
1: you
0: send observers?
1: Because
0: then?
1: There was a lot of scrutiny of what the Congress was doing. I want to give a quick data set, Anil Antony, before we let you go, of how your own party has fared when it comes to appointing its chief ministers and how quickly decisions are taken. In the case of Odisha, 8 days were taken to have Mohan Charan Manjhi declared as chief minister. Chandrababu Naidu, not BJP, but for the NDA chief minister, 7 days were taken. In the case of Pema Khandu, 8 days were taken. In the case of Nayab Singh Saini, 8 days were taken. But in the case of Rekha Gupta, on the other hand, almost 11 days were taken, close to 2 weeks. That is what the BJP took in order to declare the name of the Delhi chief minister. So parting thoughts, Anil Antony? Let's not be so unfair to the Congress party. They are also taking as much time as you took in Delhi, or as much time perhaps that you had taken in Maharashtra in the case of Devendra Fadnavis. Again, you took 10 days.
2: So, major difference is in all these states, you were right that in some of the places some time was taken. But no, not even all these states did we have like two or three of our leaders in public, like their supporters burning each other's fluxes, or you know, abusing each other in social media, or like trying to threaten each other, etc. It was a very smooth process, a democratic process. An observer in each of this state, a senior leader went there. There were meetings with all the MLAs, and finally, the legislative party unanimously in all these places had chosen a chief minister.
1: Mm.
2: I highly doubt that.
1: Maybe you will be well advised to at least stop all the sneaky mind games which are happening on the side. You know, nobody is fooled by all of these strategically planted leaks, these photos, these posters going up in Thiruvananthapuram and Wayanad. It's very, very apparent what is happening. But we wish you luck. And we wish luck to whoever is going to be the next chief minister. It's completely out of time. Thank you very much, all gentlemen, for having joined us. Tomorrow, a big day where the meeting of the legislature party of the Congress is going to take place. And that announcement, hopefully, is finally going to happen. Okay, and now let's shift our focus to another election, but one that is going to happen next year. We're talking about Uttar Pradesh, and it seems that the main opposition party has a sort of death wish. Why? Because you've got a very prominent spokesperson of the Samajwadi Party sparking a caste storm. What happened was that Rajkumar Bharti, the national spokesperson of the Samajwadi Party, has now been booked by the UP police for making derogatory remarks against the Brahmin community. In a viral video, in an event that was organized by the Rajiv Gandhi Foundation, Mr. Bharti is heard saying, while some prostitutes may be good, they may have some good in them, no Brahmin can ever be good. Simply can't be expected of them. After a massive political backlash, he issued an apology in which he claimed that his remarks have been distorted and that he never intended to hurt anyone's sentiments. First, listen in to actually what was said.
3: Brahman banana vaishya in mein banana koi. Aur koi koi vaishya to bali Brahman यार ये तो ज्यादा खराब हो गया ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते भले होते
4: सुनाया नहीं
3: ऐसा नहीं
4: पोस्टर लगवा दीजिए बाकी चीज का
5: राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता होने से पहले पत्रकार हुआ करते थे पढ़ी लिखी बातें किया करते थे लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद से समाज में जाति का जहर घोलने की ये जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दी है और इसीलिए आप देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जातियों को आपस में लड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं
6: आपको प्रायश्चित भी करना होगा आपको ब्राह्मणों का एक प्रकार से पूजन करना चाहिए आपको ब्राह्मणों के सामने एक संदेश उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अब दोबारा आप ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे और समाजवादी पार्टी से भी हम कहेंगे कि आप भी इतना बड़ा विषय हो गया और आपकी एक टिप्पणी उस पर नहीं आ रही है हम अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे कि राजकुमार भाटी जैसे नेताओं पर आपको नकेल कसनी होगी आपको अंकुश लगाना होगा
1: Dr. Kaushalkant Mishra, spokesperson of the BJP, joins us. But the man of the moment, as it were, Rajkumar Bharti himself joins us. Bharti ji, kya zarurat thi ye bolne ki? Aap keh rahe hain isko out of context liya gaya hai. But jab aap ye bol bhi rahe the, let me just explain the context to our viewers, as was explained by Mr. Bharti. He said that in this event, he was just saying that there are a few such sayings in popular discourse where, you know, such caste-specific slurs are spoken, and I do not attest to that. बट आप तो खुद खिलखिलाकर हंस रहे थे, आप उसकी निंदा नहीं कर रहे थे, आप तो खुद खिलखिला के हंस ही रहे थे जब आप ब्राह्मण और वैश्या की बात कर रहे थे भाटी जी।
7: नहीं ऐसा नहीं है, अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो मैंने इसकी निंदा ही की थी, मैंने इसका विरोध किया था। और मैं जो कोई व्यक्ति कोई भी एक्स वाई जेड कोई किसी जाति या धर्म के खिलाफ बोलता हो या किसी जाति धर्म संप्रदाय को अपमानित करता हो, मैं उसे अच्छा इंसान नहीं मानता, मैं उसे अच्छी बात नहीं मानता। और मैं अपना अपने दिल की बात ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कभी किसी जाति या धर्म या समुदाय के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। ये विषय ये था कि जवाहर भवन में एक पुस्तक का विमोचन था, पुस्तक का नाम था जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, भारतीय समाज में लोकोक्तियां, जातियों को लेकर लोकोक्तियां, मुहावरे और कहावतें, टॉपिक ही ये था। तो वहां ये बताया जा रहा था, अलग अलग वक्ता ये बोल रहे थे कि क्या क्या कहावतें, किस किस तरह के मुहावरे, किस किस तरह की लोकोक्तियां समाज में प्रचलित हैं। मैंने एक इससे पहले जो कहावत बताई थी वो खुद हमारे समाज के खिलाफ है। मैंने बोला था कि हमें लोग ये सुनाते थे कि गुजर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये छह ना होते तो खुले किवाड़ सोते। हंसा मैं इस पे भी था, अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे मैं इसलिए हंसा रहा था, मैं कहने वालों की मूर्खता पे हंस रहा था। और फिर मैंने ये बोला कि ब्राह्मणों के खिलाफ भी ऐसा नहीं है, एक तरफ से ही है, दूसरी तरफ से भी ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह के बनाए जाते हैं।
1: बताइए कौशल कांड
7: बोला,
1: आप इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर के तोड़ मरोड़ के इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने बोला, उन्होंने गुजर अहीर कंजर पे ऊपर भी बोला, और आई अपोलोजाइज इफ यू नो दिस इज नॉट मेंट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट दिस वाज द एग्जैक्ट वर्ड्स कोटेड बाय राजकुमार भाटी। उन्होंने ये भी लोकोक्ति बोली थी कि गुजर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये छह ना होते तो खुली दीवार में सोते। किसी गुजर अहीर ने तो इस पे कोई ऑफेंस नहीं लिया, आप जबरदस्ती इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं कौशल कांत मिश्र?
8: पद्मजा, एक आदम गोंडवी साहब होते थे, उन्होंने एक छोटे सा शेर लिखा था कि काजू भुने हैं प्लेट में विश के गिलास में, पक्के समाजवादी हैं उजले लिबास में, और उतरा समाजवाद है राजकुमार भाटी की बात में, यही असली समाजवाद है। ये तो बस मुखौटा है। मैं अखिलेश यादव की ये क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अखिलेश यादव के ज़माने में अखबार में क्या छपता था कि ब्राह्मणों का हमेशा विरोध करती रही है समाजवादी पार्टी। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, मैं नहीं लेके आया हूँ, पहले ही प्रिंट किया गया है, इसको आप लोग सब लोग देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का असली करेक्टर क्या है। एक ही नहीं है, दूसरी क्लिपिंग है इटावा में, मुलायम सिंह जी जहाँ पर खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार को निकाल करके उसकी औरतों को और बच्चों को मुँह पे कालिक पोत करके उनको घुमाया फिराया गया था, ये असली करेक्टर। अभी कुछ दिन पहले इनके पीडीए में पी को पंडित बना दिया था और उसके बाद ये हो रहा है, और बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ और ये पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है पद्मजा। आपके मेरे पास इनका आमंत्रण है, इस आमंत्रण को ध्यान से देखिएगा, इस आमंत्रण को मैं पढ़ता हूँ। ये आमंत्रण सौजन्य कौन था, यानी कि स्पॉन्सर कौन था? राजीव गांधी फाउंडेशन इसका स्पॉन्सर था। किताब का नाम क्या है? जाति एवं सांप्रदायिकता के विषाणु, और लिखने वाले लेखक कौन है? डॉक्टर शकील अंसारी जावेद अख्तर, और मुस्लिम महाज का आयोजन था। और इसके जो वक्ता कौन कौन थे, नाम लेना चाहता हूं कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। पहले वक्ता योगेंद्र यादव, दूसरे वक्ता अभय कुमार दुबे, तीसरे वक्ता आशुतोष, चौथे वक्ता डॉक्टर हिलाल अहमद, पांचवें वक्ता प्रोफेसर रतनलाल, छठे वक्ता राजकुमार भाटी जी, सातवीं वक्ता शीबा असलम फाहिमी। ये सब नेटवर्क है, नेक्सस है। क्यों? क्योंकि पहले जातियों में हिंदुओं को तोड़ो, क्योंकि हिंदुओं को कभी हरा नहीं सकते, हिंदू कभी नहीं हरा।
1: नहीं, पर उन्होंने तो माता प्रसाद पांडे जी को इतना सम्मान दिया है, तो फिर वो कैसे ब्राह्मण के खिलाफ हो सकते हैं? वो तो उल्टा कह रहे हैं कि देखिए इनको हमने इतना बड़ा पद दिया है माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश के अंदर।
8: अरे पद्मजा जी, माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में उनके पिता श्री जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि जो बाप का नहीं हो सकता, जो चचा का नहीं हो सकता, वो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा। ये मैंने थोड़े ना कहा था, ये तो उनके पिताजी ने ही कहा था। और जब भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जब भी किसी के साथ मिलती, उसका करेक्टर ही चेंज हो जाता है। एक बार मिली थी समाजवादी पार्टी मायावती के साथ, तो नारा क्या हो गया था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जो राम का ना हुआ, जो देश का ना हुआ, जो बाप का ना हुआ, वो किसी समाज का।
1: ये सिर्फ एक बहाना था, बेसिकली इरादा वही है कि किसी एक जाति विशेष को निशाने पर लाना, टारगेटिंग अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, और आप तो रिपीट ऑफेंडर रहे हैं। अगर इसको हम मान भी ले कि ये इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, आप तो रिपीट ऑफेंडर रहे हैं। आपने तो पहले भी कितने स्टेटमेंट्स दिए हैं।
7: नहीं नहीं, नो नो नो नो, आप गलत आरोप लगा रही है मेरे ऊपर।
1: नहीं, कैसे?
7: ये गलत आरोप लगा रही है।
1: क्या गलत आरोप लगा रही
7: है? फिर दोहरा रहा हूं मैं, किसी जाति किसी ये जो कह रही है कि आप रिपीट ऑफेंडर रहे हैं, मतलब मैं ऑफेंड करता रहूं?
1: हाँ,
7: लेकिन
1: बिल्कुल?
7: मैं आपने अभी कौशल कांत मिश्रा जी को पूरा समय दिया, वो नहीं, कैसे कैसे कैसे
1: कैसे, चलिए आपको सुना देते हैं। भाटी जी को ऑनर रखिए, उनको उनका पहले का एक वक्तव्य सुना देते हैं। हर सुबह दो लोग निकलते हैं हर कॉलोनी के अंदर से, एक के हाथ में होता है पंचांग और दूसरे के हाथ में होता है झाड़ू। लेट्स प्ले दैट आउट, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आप रिपीट ऑफेंडर नहीं है, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए कि पहले आपने एक जाति विशेष के बारे में क्या टिप्पणी की है।
7: नहीं, मुझे याद है जो मैंने बोला,
1: मेरी रुकिए,
7: ज्यादातर आपने दो लोगों को निकलते हुए देखा होगा, एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है, सब बहकाने वाला सौदा है, और बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है।
1: बताइए भाटी जी, पंचांग और लगा करके वो लोगों को बहलाता है और दक्षिणा लेता है।
7: इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? पहली बात तो क्या ये किसी जाति के खिलाफ बोला मैंने?
1: सारे लोग जो हाथ में पंचांग और
7: मैं तो भारत की जाति व्यवस्था पर बोल रहा हूँ, और मैं
1: वो लोगों को लूटते हैं, भटकाते हैं, उनसे दक्षिणा लेते हैं।
0: कौन चलता है भाटी?
7: मैं बोल रहा हूँ नहीं, अब जब जैसे आपने कौशलकांत मिश्रा शांति से अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे भी आप बात कहने का अवसर दें। आपने सवाल पूछ लिया, आपने क्लिप सुना दी, मैं जो मैंने इसमें बोला, मैं एक भी शब्द का खंडन नहीं कर रहा। ये भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास सदियों से हो रहा है, महात्मा बुद्ध के ज़माने से हो रहा है, कबीर, नानक, दादू, रैदास, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, अनेक महापुरुष इस देश में हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अनेक हुए जो इस जाति व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते रहे, जहां एक मेहनतकश जाति को अपमानित किया जाता है और एक जाति को ऊपर बताया जाता है, एक को नीचे बताया जाता है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं।
1: नहीं नहीं, भाटी जी, यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे आपने बहुत सिंपली ये बात,
7: सब बराबर है,
1: जो आदमी माथे पे तिलक और हाथ में पंचांग लेकर के निकलता है वो धूर्त होता है, और ये बार बार जो एक तरीके से पिक्चराइजेशन किया जाता है, आप बिल्कुल उसी स्टीरियोटाइप को अपहोल्ड कर रहे थे, जो है ना घूसखोर पंडित, धूर्त पंडित, वही आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे और वही आपकी बातों में झलक रहा था। यहाँ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि तोड़ा मरोड़ा, आप उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। क्या हाथ में पंचांग लेने का मतलब यह हो जाता है कि आप धूर्त हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं?
7: पदमजा जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपके मन में कोई पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, इसलिए आप
1: पूर्वाग्रह तो आपका भी झलक रहा है ना, अगर माथे
7: ने कहा कि सम्मान उसको मिलना चाहिए,
1: आपको लगता है कि वो लोगों को लूटने के लिए निकला है।
7: अब आपने तय कर लिया, आप बोलने नहीं देंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ। आपने तय कर लिया कि मैं बोलने नहीं दूंगी, क्योंकि आप शो की एंकर हैं, आप चाहती हैं कि जो आपकी मनमर्जी की बात है वो मैं बोलूं, तो बोलने देंगे नहीं तो नहीं बोलने देंगे। मेरी बात पूरी सुन लीजिए,
1: जो आपने बोला कि एक आदमी हाथ में पंचांग दबा करके निकलता है, क्या उसका क्राइम बस ये है कि वो पंचांग पकड़ा हुआ है और तिलक लगाया हुआ है, मतलब कि वो चोर है? सारे लोग जो तिलक लगाते हैं वो चोर होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं,
7: फायदा क्या? इस तरह डिबेट होती है? आप मुझे भाषण देने के लिए आपने बुलाया या मेरे पक्ष सुनने के लिए बुलाया,
1: बताइए?
7: आपको भाषण देना है मुझे आपकी बात बैठ के सुननी है क्या, या अपनी बात कहनी है? मुझे अपनी बात कहने का मौका देंगी आप या नहीं देंगी? मैंने केवल ये कहा है इस वीडियो में, मैंने किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने ये कहा कि जो आदमी मेहनत करता है, जो उस मोहल्ले की सफाई करता है, सम्मान उसे भी मिलना चाहिए, उसे हम अपमानित करते हैं, उसे सम्मान नहीं देते, उसे बराबर में नहीं बैठने देते। मैंने क्या गलत कहा बताइए आप? ये हमारा संविधान भी कहता है।
1: क्योंकि आपका जो भाषण,
7: अगर आप चाहते हैं कि
1: इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी,
7: हजारों साल
1: आपने सिर्फ दो तस्वीरें पेश की। आपने कहा एक आदमी झाड़ू पकड़ता है, बस एक आदमी की गलती सिर्फ ये है कि वो तिलक लगाया हुआ है और दूसरे आदमी, क्योंकि वो झाड़ू पकड़ा है वो सही है। एक आदमी गलत

0: सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने पंचांग बगल में दबाया है और माथे पे तिलक लगाया है। और ये आपने एक अकेली बात नहीं कही है सर, आपने एक और बात कही है और मैं आपको वो भी कोट करना चाहती हूँ और मैं वर्बैटिम कोट कर रही हूँ। आपने कहा कि हमारा हक किसने खाया? अगर हमारा हक पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी ने नहीं खाया होता तो हमें आरक्षण की जरूरत नहीं होती और आज भी ये लोग उसी पैनल पे बैठे हुए हैं। कौन? यही पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी। क्या गलती है कि उनका नाम ये है? ये तो आपका पूर्वाग्रह दिखाता ना, इट शोज हाउ यू आर बायस्ड।
1: नहीं, आप बायस्ड हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप एक पक्ष में खड़ी हुई हैं। आप तय करके आई हैं कि आपको मुझे डांट पिलानी है, मुझे भाषण देना है, आप मेरा पक्ष सुन नहीं रही हैं और मैं ऐसी डिबेट को डिबेट नहीं मानता। ये डिबेट नहीं है, ये आप एक आदमी को बुला
0: के ये ऑफेंसिव पर जा करके तो कोई एक्सप्लेनेशन
1: नहीं। आपका रोल नहीं है जो आप रोल कर रही हैं।
0: आपने कहा
1: ये आपका रोल नहीं है जो आप रोल कर रही हैं।
0: एक तरफ किसी को दबाया जा रहा है,
1: मुझे भाषण,
0: आप उसके खिलाफ बोल रहे थे
1: और गलत
0: भाषण नहीं दे रही
1: हैं आप।
0: मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं कि आपने आइडेंटिफाई करके अगर किसी को गलत पोर्ट्रे किया है उसको फिर आप जाति सूचक कैसे नहीं बोलेंगे भाटी जी?
1: आप गलत आरोप लगा रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं लगातार, आप प्रोपेगंडा कर रही हैं, आप बायस्ड हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, आप पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं। अपने शो में गेस्ट को बुला के आप लगातार उसे भाषण पिला रही हैं, उसका पक्ष बोलने नहीं दे रही हैं, आप उसका पक्ष सुनने नहीं दे रही हैं श्रोताओं को। ये डिबेट नहीं होती है, मैं घोर निंदा करता हूं इसकी।
0: राजकुमार भाटी जी, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चंस और आपकी बातों को हमने बिल्कुल वर्बैटिम पेश किया है। आई थिंक आपका पक्ष और आपकी बातें लोगों ने सुनी है। आई लीव इट टू देयर विजडम अगर उनको लगता है बायस किसकी तरफ है, हु वाज बायस्ड, हु ऑलरेडी वांटेड टू प्रोजेक्ट
1: इमेज ऑफ कम्युनिटी।
0: आई विल लीव इट टू देयर विजडम। और ये आपको भी पता है कि आप तो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं, आप भी इसकी क्लिप डालेंगे, आप इसको बायस कहेंगे, लोग वहां पर भी आकर के खुद से जज कर लेंगे कि कौन सही है और कौन बायस्ड है। फॉर द टाइम बीइंग, राजकुमार भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स ऑल्सो टू कौशल कांत मिश्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
2: Twenty-one days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
2: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Dikwad saab, aise mat kijiye. Suddenly, people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
4: And for a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
2: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
3: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
5: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
11: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
12: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचर झोल।
10: How will you celebrate?
11: झालमुड़ी माचर झोल with रसगुल्ला।
13: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
14: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
15: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
16: One clip that went most viral was the non-interview. Crew spent some time with him.
17: We have these whistles out for you and the

0: ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
2: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा, नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा, कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से, कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इश्यू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
3: আমি ওয়েলকাম করেছি এবং আমি উনার টুইট দেখার পরে, মানে খবরটা দেখার পরে, আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক, স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
4: দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ রিডিউস দি নাম্বার অফ ভেহিকলস ইন হিজ ক্যাভালকেড, দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস অ্যান্ড মিনিস্টার্স আর অলসো টেকিং দ্য রিকোয়ার্ড অস্টেরিটি মেজার্স। দ্য কোয়েশ্চন ইজ দ্যাট রাহুল গান্ধী ইন দ্য কংগ্রেস পার্টি, ওয়াই আর দে সাইলেন্ট অ্যান্ড ওয়াই হ্যাভ দে নট ফলোড অ্যাকশন ইন প্লেসেস ওয়ার দের ইজ কংগ্রেস গভর্নমেন্ট। দিস ফার্দার প্রুভস দ্য পয়েন্ট দ্যাট দ্য কংগ্রেস পার্টি বিলিভস ইন পলিটিক্স, নট ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট।

0: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
2: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का और से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इश्यू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
3: আমি ওয়েলকাম করেছি এবং আমি ওনার টুইট দেখার পরে, মানে খবরটা দেখার পরে, আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক, স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
4: দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ রিডিউস দি নাম্বার অফ ভেহিকলস ইন হিজ ক্যাভালকেড, দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস অ্যান্ড মিনিস্টার্স আর অলসো টেকিং দ্য রিকোয়ার্ড অস্টেরিটি মেজার্স। দ্য কোয়েশ্চন ইজ দ্যাট রাহুল গান্ধী ইন দ্য কংগ্রেস পার্টি, ওয়াই আর দে সাইলেন্ট অ্যান্ড ওয়াই হ্যাভ দে নট ফলোড অ্যাকশন ইন প্লেসেস ওয়ার দের ইজ কংগ্রেস গভর্নমেন্ট। দিস ফার্দার প্রুভস দ্য পয়েন্ট দ্যাট দ্য কংগ্রেস পার্টি বিলিভস ইন পলিটিক্স, নট ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট। This is why whether it is Himachal Pradesh where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi in the mind of the people of the country is considered not as a pro-India politician but as an opportunist anti-India politician.
5: The CBI probe intensifies in the NEET paper leak. At least 5 accused have been arrested so far from different states. Students' anger continues to grow over the cancelled exam and many are demanding the

0: வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் 34.92% 1,72,26,208 வாக்குகளை மக்கள் தந்தனர். தமிழக வெற்றி கழகத்தை தனி பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். குதிரை பேரத்தில் எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்று கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
1: இருக்கின்ற கட்சியாகத்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும். எங்களுக்கு எதிரி கட்சி இல்லை, எதிர்கட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்போம். எங்களுடைய தலைவர்கள் அந்த பாதையைத்தான் எங்கள் வலியுறுத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவித்து, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எதிர்த்துத்தான் வாக்களிப்பார்களா என்பதை தெரிவித்து அமர்கின்றேன். தீர்ப்பளித்து இன்றைக்கு முதலமைச்சருக்கு வாக்களித்துள்ளார்கள், அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம் அதிமுக சார்பாக. அதே போல நாங்கள் யாரும் பதவிக்கு ஆசைப்படுவது கிடையாது, பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு அவர் கிடையாது.
2: தலைவருக்கு தெரியாம திருட்டுத்தனமாக இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவு தர வச்சிருந்தீங்க. இப்ப நான் சொல்றது ரொம்ப டீசென்டான வெர்ஷன். உங்க ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஆட்சியா இல்லாம ரியல் ஆட்சியா நடத்துங்க, அது மட்டும்தான்.
3: Now, days after PM Modi's call for saving fuel, Prime Minister Narendra Modi was seen leading by example. He has cut down the number of vehicles in his own convoy to just 2 cars. And the visuals on your screen show the earlier convoy of the Prime Minister, which was at least 12 cars in the convoy. And now, with just 2 cars, seen as per sources, the Prime Minister has even asked for the number of electric vehicles to be increased in the convoy. Remember that earlier this week, Prime Minister asked the nation to reduce the fuel usage, and hence he is now following and leading by example and asking others to follow. Now, not just the Prime Minister, but even the NDA CMs have decided to cut down their convoys. The convoy size has been reduced significantly by the ministers as well. And this is not just the first, but the second time that the Prime Minister has appealed about saving fuel, as there is a fuel shortage due to the ongoing war in the Iran versus US tension. Take a look at the reactions of the BJP netas.
4: कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पुल करने का प्रयास करें.
5: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
6: कोई सारे ऑस्ट्रेलियाई मेजर हमने आज अडॉप्ट किया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इश्यू है। एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
7: আমি ওয়েলকাম করেছি এবং আমি ওনার টুইট দেখার পরে, মানে খবরটা দেখার পরে, আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক। স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
8: দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ রিডিউস দি নাম্বার অফ ভেহিকলস ইন হিজ ক্যাভালকেড। দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস অ্যান্ড মিনিস্টার্স আর অলসো টেকিং দ্য রিকোয়ার্ড অস্টেরিটি মেজার্স। দ্য কোয়েশ্চন ইজ দ্যাট রাহুল গান্ধী ইন দ্য কংগ্রেস পার্টি, ওয়াই আর দে সাইলেন্ট অ্যান্ড ওয়াই হ্যাভ দে নট ফলোড অ্যাকশন ইন প্লেসেস ওয়ার দের ইজ কংগ্রেস গভর্নমেন্ট। দিস ফার্দার প্রুভস দ্য পয়েন্ট দ্যাট দ্য কংগ্রেস পার্টি বিলিভস ইন পলিটিক্স নট ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট। This is why whether it is Himachal Pradesh where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi in the mind of the people of the country is considered not as a pro-India politician but as an opportunist anti-India politician.
3: The CBI probe intensifies in the NEET paper leak. At least 5 accused have been arrested so far from different states. Students' anger continues to grow over the cancelled exam and many are demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. NDTV has accessed the timeline of events. As per sources, the paper began circulating 45 hours before the exam and reached Sikar in Rajasthan, Jaipur and other coaching centres. The leak came to light as a student hailing from Sikar sent his father, a hostel owner, the question paper. As per sources, the paper was sold for around 10 to 15 lakh rupees and the CBI is looking closely into the Telegram groups. At least 120 closed Telegram groups were allegedly made to circulate this NEET UG paper. Now, sources suggest that the leak